0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटो कपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि, टिकापुर, कैलाली। सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 9811638887।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नै निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: पार्क रोड टिकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 9848 40 22 41।
1: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।
1: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खिलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: ओई बहिनी, घरमा बत्तीको सामान चाहिएको थियो, कहाँबाट किन्ने होला?
4: किन टाढा जानु दिदी, जमारा पारी पेट्रोल पम्प अगाडि न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर छ नि, त्यहाँ घर तथा पसलका लागि चाहिने विभिन्न विद्युतीय सामानहरू पाइन्छन्।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो कस्तो सामान पाइन्छन्?
4: त्यहाँ त हाउस वायरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू, विभिन्न ब्रान्डका तार, एसी, पंखा, हिटर, गिजर, मोटर तथा हाउस वायरिङ सम्बन्धी पाइने एकमात्र न्यू ओम बिजुली भण्डार छ नि।
3: त्यसो भए अब बिजुलीका सामान किन्न अन्त कतै जानै परेन।
4: हो नि, तपाईँलाई पनि घर कार्यालय वा पसलका लागि बिजुलीका सामान चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
3: न्यू ओम बिजुली भण्डार सप्लायर्स, जमरापारी पेट्रोल पम्प अगाडि, संचालक राम बहादुर चन्द, सम्पर्क नम्बर 98-48-59-67-33 र 98-51-18-82-46।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। रैथाने जात के बीया में परिवर्तन हुलकोर से किसान उक्रम के अन्दा भंडारण नो बीया धरना में समस्या। किसान उक्रे वर्षनी बजार मन से बीया खोज पर्न बाध्य। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सकु सदस्य हुक्रम के निःशुल्क दुर्घटना बीमा करना। बजेट रोग गिलक सुरपश्चिम में अस्पताल में औषधीय अभाव। मापदण्ड अनुसार सड़क निर्माण में प्राथमिकता देहल। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 के वाड़ा अध्यक्ष दीपक चौधरी के कहायो। नेपाल ओमान ही समेत 87 रन से हिटैती। एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में प्रवेश। आप पूरा खबर। रैथाने जात के बीया में परिवर्तन हुलकोर से किसान हुकरण अन्न भंडारण ओ बीया धरना में समस्या हुलवा। बीउ परिवर्तन हुल संगे थारू समुदाय से अन्न भंडारण करना तरीका फिर समेत बदलक बाकल से। पाचक समय में अन्न भंडारण करना तरीका केल नहीं होके बीया में हुलक परिवर्तन संगे कृषक हुकरण के अन्न बाली में विषादी के प्रयोग करना बाध्य समेत हुई बताया। समय बीतलक संगे थारू समुदाय में अन्न भंडारण करना तरीका फिर परिवर्तन में अलग। पहला थारू समुदाय अन्न भंडारण के लग माटी के देहरी उस्तक बीया धरना कुठली उस्तक थारू आलू धरना पैरक पोका लगायत के समेत घर के समेत उस्तक गोठ में झुरैना चलन रह कल से अन्न भंडारण में समेत ऐसी के हुईती रह कल से अन्न भंडारण करबे और कीड़ा नहीं लगना हो नहीं सरना फे संभावना कम रह। ऐसी के समेत पहला असी करल से आजकल से ही वकर्थिक का चेंज हुई लग जानकी आठ के चंद्रिका चौधरी के कहाइबा। पहला रैथाने जात के अन्न उसके आयरेट लत्यारा मनसूली लगायत के धान के समेत लगेना चलन रह। रैथाने जात के धान लगेले को से बीया केलक समस्या नहीं रह। घर में धरगिल बीया से काम चले बाहर से बीया खरीद कर पर्ना खोजे पर्ना अवस्था नहीं रहे। मनो ये समस्या समेत आजकल हुईतिरलक चंद्रिका चौधरी के कहाइबा। पाचक समय में थारू समुदाय में आलू बीया कोल्ड स्टोर में धरना उस्तक खैना धान कठुआक भकरी बना के समेत धरना तीन के डब्बा में धरना चलन बढ़ल बा। धान मफे समेत हाईब्रिड जात के धान लगैना रलक ओर से घर में अन्न भंडारण में फिर समस्या होती रहल बा। घर में धरगिल बीया के समेत काम करती प्रत्येक वर्षा समेत बाजार में धान के बीया किने पर्ना रहल जानकी आठ भगरैया के तारा चौधरी के कहाइबा। अन्न भंडारण करना तरीका में परिवर्तन आयल संगे किसान हुकरा धान घरम समेत धरनेरा अन्नपाद में विषादी के प्रयोग खोजी रहल बा। अब लाओ लाओ जात की बीया बाजार मन से लान के खेती करलक ओर से भंडारण करबेर बीया जोगैना में समस्या रहल जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के जगतपुर के जोग बहादुर चौधरी के कहाइबा। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 सुवर्णपुर के भागीराम चौधरी फिर उसका समस्या भोगे पड़ल बा। पुराने परिपाटी नई रलक वर्षे परिवर्तन हुईना मजा रल से फेन परिवर्तन के बहानमा पुरान हे समेत हेरैटी जैना लौवा लंटी जैना ढेर मल विषादी प्रयोग करना मजा नई रलको यी विषय में समेत ध्यान देह पर्न जरूरी रहल बा। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ से व्यापारी हुकरण के व्यावसायिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा करल बा। निःशुल्क दुर्घटना बीमा के लग टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ प्रोटेक्टिव माइक्रो इंश्योरेंस लिमिटेड बीच में समेत द्विपक्षीय समझौता हुई बा। समझौता के संघ के ओर से अध्यक्ष संतोष खड़काओ, इंश्योरेंस के ओर से शाखा प्रबंधक प्रकाश रेग्मी से हस्ताक्षर करल बाटन कल से टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव प्रकाश चिमेलसेना जानकारी दिले बाटे समझौता अनुसार संघ में दर्ता रहलक नवीकरण हुईल व्यापारी व्यवसाय हुकरण के 1,00,000 रूपया बराबर के निःशुल्क दुर्घटना बीमा लाभ पैना हुईल बाटे ई समझौता 1 वर्ष समकेलक होना औ निःशुल्क समेत बीमा कार्यान्वयन के आईवेद ई वर्ष ऐना वर्ष माफी नियंत्रता पैना कहलवा छोट व्यवसाय हुकरा दुर्घटना में पड़ला से पटक पटक समस्या में ऐना करलक कारण से इसे कुछ सहज होना आगामी दिन में फे और कार्यक्रम के लग फे समेत संघ आगे बढ़ना महासचिव तिमल सेना बटोले बाटे निःशुल्क दुर्घटना बीमा अंतर्गत के व्यवसायिक दुर्घटना रहलक ओ मृत्यु रहलक हुकरण के 100% बीमांक रकम पैना क्रिया खर्च बाफत के बीमांक रकम 10% वा 10,000 घायल के अवस्था हेर के ढेर में 100% समेत ओ घायल हुके औषधि उपचार कर पड़लक अवस्था में 1,00,000 रूपया समके औषधि उपचार खर्च पैना कहलवा टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ से पहिल पटक व्यापारिक व्यवसाय हुकरण केलक निःशुल्क दुर्घटना बीमा करलक हो बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक रेग्मी व्यापारी व्यवसाय हुकरण से सहजे बीमा दावी कर सकना वहां हुकरण बीच के बीमा दावी में कोनो अप्ठ्यारो नै हुना बतागिल बा। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पछि फेर से भी सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: त एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरदम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिसक्छ त यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टीकापुर कैलाली संचालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 98 68 40 16 60।
0: विश्राम पछि फेर से स्वागत बा। रसुवाके भोटेकोशी लद्यामा भदौ 10 गते आइलक बार पाछे पुरा निर्माण केलक 7 खरबा रूपया से ढेर स्रोत आवश्यक पर्ना सरकार से अनुमान करल बा। राष्ट्रीय योजना आयोग ओ राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के संयुक्त प्राविधिक टोली से तैयार पर्लक द्रुत क्षति तथा आवश्यक संकलन समेत प्रतिवेदन अनुसार 2 चरण के पुनर्निर्माण केलक 7 खरब 23 अर्ब 31 करोड़ 52 लाख रूपया आवश्यक पर्न देख गिल्वा। यी रकम चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 कुल बजेट की तुलनामा 34% हुई आयल बता गिल्वा। पुनर्निर्माण के पहिल चरणमा अन्तर्गत के आगामी 6 महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माण केलाक समेत 8 अर्ब 73 करोड़ 50 लाख रूपया लग्न अनुमान करल बता गेल बा। उसके दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के लाग 7,14,58,2,00,000 रूपया खर्च होना सरकार से अनुमान करल बा। प्रतिवेदन अनुसार विपद मन से सबसे ढेर प्रभावित हुईना पूर्वाधार क्षेत्र रहल बा, जेकर पुनरुत्थान के लाग 4,73,57,19,00,000 रूपया स्रोत रहल आवश्यक पड़ल बता गेल बा। कुल पुनर्निर्माण में समेत लागत के तुलना में पूर्वाधार क्षेत्र में केल हिस्सा केल 75% हुईना कहल बा। अवसर के पूर्वाधार क्षेत्र में ऊर्जा और सड़क में सबसे ढेर क्षति पुग्ला प्रतिवेदन में उल्लेख करल बा। बाढ़ पाछे 759 मेगावाट के क्षमता के 13 जल विद्युत आयोजना 24 मेगावाट के 5 सोलर प्लांट फे प्रभावित हुई बताया गया। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनर्निर्माण के लाग केल 3,90,62,30,40,000 रूपया

0: त्रिपन्न थो समेटमा पुलमा छेटी पुगल प्रतिवेदनमा उल्लेख गरल बा। हाल देशभर मनसुनी वायुकी प्रभाव रहल बा। हाल मनसुन के न्यून चापीय रेखा पश्चिम सरदर स्थान सेफे समेत एकचोटी उत्तरलांग तथा पूर्वमा सरदर स्थान के आसपासमा रहल बा। हाल बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतया मौसम बदलन बा। कलशे कोशी मध्य प्रदेशमा आंशिक रूपमा मौसम बदलन बा। गण्डकी प्रदेश के पहाड़ी भूभागमा एक दुई स्थानमा समेत हल्का वर्षा होइत रहल बा। कलशे आज दुपहर के फेर देशभर साधारणतया मौसम बदलन बा। कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश के हिमाली भूभागमा कुछ स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभागमा कम स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित के मध्यम खालके वर्षा हिमपात के सम्भावना रहलबा। आगामी तीन दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत के लुम्बिनी कर्णाली लगायत के प्रदेशमा भारी पानी पर्न सम्भावना समेत भर्नेरलक मौसमविद डेभिड ढकाल जानकारी दिलेबाट समग्र देश के बात गर्लसे। लुम्बिनी से लेके पूर्व के भूभाग में कुछ स्थान तथा कोशी और बागमती प्रदेश के पहाड़ी हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल। मौसमविद ढकाल जानकारी दिले बाटे। खोज खबर माई घड़ी फेन से विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
3: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मई नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। बाढ़ पहिरो के कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थान के धितु पत्र और ऋण में समेत पड़ला प्रभाव के बारे में तथ्यांक संकलन होती रहल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक से एकर तथ्यांक संकलन करती रलक राष्ट्र बैंक के सहप्रवक्ता सुधा श्रेष्ठ बटोली बाटी वहां के अनुसार हाल तथ्यांक संकलन करना काम प्रारंभिक अवस्था में रलक को दैनिक रूप में लौ विवरण अपडेट फिटी रहल बटोली बाटी नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल आईएमई बैंक के सीईओ सुरेन्द्र राज रेग्मी पाछक समय में अलग बार पहिरो प्राकृतिक विपत्ति के कारण नेपाल के बैंकिंग क्षेत्र में भारी क्षति पुग्ला प्रारंभिक अनुमान कर बाटे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट विहीन बनलक दुई महीना पुगल अग्ल से फेन एक प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्ती रहल बा। प्रदेश सरकार मार्फत के अस्पताल में निःशुल्क वितरण हुई औषधि संघे प्रयोगशाला और शल्यक्रिया के आवश्यक सामग्री के मौजदात घटी गई पाछे सेवा संचालन में कठिनाई हुई रलक बताई गई बा। प्रदेश सरकार से आसार एक गते प्रेस सभा में समेत 37,70,39,00,000 रूपया के बजट प्रस्तुत कर रहा। बजट ऊपर के विवाद के कारण

पारित हुई। नई सेकलक पाछे साउन एक गते से लैके प्रदेश सरकार बजेट शून्यता में रहल बा। आगे आर्थिक वर्ष में खरीद कर गिलक सामग्री से सेवा समेत धंती अलग अस्पताल में अब्बा समेत मौजदात ओराइटी रलक बता गिल बा। ओ मलेसियामा चल्तिरहला एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट के सेमी फाइनलमा नेपाल ओमानले 87 रन से पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएल बा। कालीखुल खेलमा पहिलो ब्याटिङ गर्लक नेपालले 45.4 ओभरमा सबको विकेट गुमाके 147 रन बनाएल र नेपाल केलक सन्दीप एरीसे 51 तथा बसीर अहमद से 47 रन बनाएल रहे। संकटमा पर्लक नेपाल हे दिपेन्द्र ओ समेत बसीर से 93 रन के महत्वपूर्ण साझेदारी मार्फत ऊपर उठाएल के हुई। नेपाल केलक कप्तान सन्दीप लामिछाने दिपेन्द्र सिंह एरी 3-3 विकेट लेने कलशर रोहित पौडेलो ललित राज वंशी 2-2 विकेट लेहल रहे। 140 रन के लक्ष्य पैलकमा ओमान नेपाली बॉलर हुकरन के उत्कृष्ट प्रदर्शन सामु 28.1 ओवर में 60 रन मने अल आउट हुए। खोईसंगे नेपाल 87 रन से शानदार जीत निकटी प्रतियोगिता के फाइनल स्थान सुरक्षित कर लखो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। कैथाने जात के बिया परिवर्तन हुईलकोर से किसान हुकरन अन्न भंडारण ओ बिया धरना में समस्या किसान हुकर वर्षेनी बजार में बिया खोजे पर्न बाध्य। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सबको सदस्य हुकरन के निःशुल्क दुर्घटना बीमा करना बजेट रोग गिलाक सुर पश्चिम में अस्पताल माफे औषधी अभाव। नेपाल ओमान हे 87 रन से हितैती एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में प्रवेश। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब की खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफरेंस सुनते अभी राम।

0: बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे ग्वाज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870710672
6: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

राम राम। समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सबको रेडियो प्रेमी मैकर संगठन में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाहम। मई चांद मुरी बोल अपने हुकन के संगे पुगे इत्यादि संगठन रत्न जी ऑनलाइन में www.tikapureshm.org टीकापुरेशम एप मार्फत व हमारो पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सबको जाने संगे थी। कार्यक्रम गौशाली हो हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म हमने सबको जाने संगसंगे रठी व आश संगसंगे हुई आपी हमने सबको जाने कार्यक्रम गौशाली हो भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गौशाली अपन अपन रानी बानी मेल खैन संगठन के संगे अपन संघर्य बनना चाहिए संघर्य के लौड़ा लौनी चाहे कोई संघर्य के अपने होके अपन सहभागी जनाई सकते 091-5-61-255 के दागर खुला भावे यही दागर हम खुला कर सकला दी संघर्य के अबे के समय में संघर्य के कहाँ करते आती जे सीटर सीटर मौसम बावे अबे के समय में निंगटी घुमटी आती फुर्सत के समय में बाटी काम धंधा में लागल बाटी की मजे हिबी कुशल मंगल आराम हिबी कना हम हन लागत हो चिरी समय निकाल के होले से फिर साठ ढेर चाहिए बिल्कुलै ना भुलैबी कि मैगर अर्जी करना चाहम अपने हुकन के संगे 091-5-61-255 के नगर खुल्ला बावे मने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक ठो गीत से लाइन खुल्ला बा

हजुर, कार्यक्रम फेर से स्वागत करना चाहब अपने उक्रन अपने उक्रे भर्खर रेडियो खोल के बैठक बाटी गले से सुन्दी बाटी समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्दी बाटी अष्टज्ञ अनलाइन में www.tikapurfm.org tikapurfm एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से हाम्रो सबको जाने सँगसँगै आती वह ठाउँ से फेपन सहभागी जना मैं विनती करम अपने हुकन के संगे लाइन खुल्ला बाबई गोचाली कार्यक्रम ई कार्यक्रम अपने हुकन के लग्न कार्यक्रम गोचाली हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन 10:15 बजे से हमरे करीब करीब 11 बजे सम्म हमरे सबको जाने संगसंगे रठी वाच से संगसंगे हुई आप गला टीका अब संग अपने हुकन के हाल खबर शीतल शीतल मौसम के संगसंगे अपने काम धंधे में लागल आती फुर्सत के समय में आती अपन अपन बिल्कुल काम धंधे में लागल आती की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम हुई भी एक छुट्टी समय निकाल के सब साथ देख चाहिए ना भूले भी अर्जी करना चाहम अपने हुकरण के संगे का करे कि ई कार्यक्रम अपने हुकरण के लग्न है कार्यक्रम गोचाल ई कार्यक्रम रेडियो मार्फत संघरे बनना मन लागल संघरे के बनाई सेकना चहुया संघरे उकरे चाहिए अपने हुकरे अपन भावना और रुचि बताएक पर न रहा तब मारे अपने हुकरे अपन रानी बानी बताएक लग जो आई सेक थी अपने हुकरण के रानी बानी मेल खाना संघरे के संगे चिंजान हुई लग चाहिए आई कार्यक्रम अपने हुकरन के लगने तैयार पारगिला खोटब मारे अपने हुकरे आदेवी मैगर जानकारी करना चाहम अपने हुकरन के संगे मिसकल बिल्कुल नाम आदेवी मजा नेतोर को हिल ठाव से साथ देना जो प्रयास कर भी पूरा बार बटवा के आदेवी मैगर जानकारी करना चाहम संघरे बना के चाहे संघरे के नाता बिल्कुल ना टूर देवी मैगर जानकारी करना चाहम अपने हुकरन के संगे ई मैगर जानकारी करना चाहम लाइन खुल्ला बाई 91.5 के दगर खुल्ला बाई हथे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद से हमने फिर से ये बाटी लाइन खुल्ला बा

0: हजुर, कार्यक्रममा फेर चाहिँ स्वागत गर्न चाहब अपने उक्रन लाइन खुल्ला बाबी 91.5 103.55 केदागर खुल्ला बाबी हिमयका जानकारी गर्न चाहब कोही सङ्ग्रह लाइनमा आतैकन संकेत मिल रहे कहाँ से कौन सङ्ग्रह आपो गला रहे वहाँ है बोलकारी। हजुर राम राम
1: राम राम दादा,
0: कहाँ से केकर बोल सुन लिए हमरे?
1: बर्दिया राजापुर से सुशांत चौधरी।
0: सुशांत चौधरी बर्दिया राजापुर 3 के खबर कैसिन बाबी?
1: खबर ठीक है बाबा, जुआ जुआ मौसम का पल रहा, हल्का हल्का पानी का टिप टिप का पल रहा,
0: हल्का हल्का पानी पड़ती बस, शीतर शीतर मौसम हमरे मजा कुशल मंगल आराम बाटी
1: एकदम आराम पल रहा।
0: खुशी लागल समझ दिली आज फेर नियमित संग्रह रेडियो प्रेमी संग्रह है साथ देती रही सुनाई सकती अपन भावना रुचि अपने के भावना रुचि संगे कोनो संगठन के भावना रुचि मेल खाए थी अपने से संघर्ष बनना जो मन लागल संघर्ष के चाहे सहज सके इसी के भेटाई से
1: कांटेक्ट नंबर दारा
0: सॉरी सेक्टर
1: 9814551150 9814551150 राजापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सुशांत चौक
0: समझे सकती संघर्ष
1: टेक्निकल दीदी है टेक्निकल डाटा
0: आप एक लग विदा है
1: राम राम
0: राम राम सुशांत जी रहे बर्दिया राजापुर 3 के संग्रह रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है यदि वहाँ के भावन और रुचि अपने मन पर थी कल से राजापुर नगर पालिका 3 सुशांत चौधरी छान में पाई सकती हस्ते के संपर्क नंबर छोड़ लाते ऊ नंबर मार्फत एकदम ऐसा जैसे वहां भेटाई सकती कहना अपने में मई का जानकारी करना चाहूँ अपने हुकन अब के पाला में अपने हुकन के फोन है बिल्कुल सफल हुई से की आई सकती लाइन खुला पाई 91.5 103.55 के दगर खुला भाई मई कर अर्जी और जानकारी करना चाहूँ अपने हुकन के संगे एकदमै एकदमै एकदमै शीतल शीतल मौसम के संग संगे दिनचर्या मजे से बिट्टी हुई करना लागत काम धंधा में लागल आती नेंगटी घूमती आती फुर्सत के समय में भी जहाँ जो अवस्था में भी रेडियो टीका आप FM 101 मेगा हर्ज जरूर फिर सुनती हुई बनाती हुई कल से बिल्कुल मजे कुशल मंगल आराम में बात करना बिल्कुल हमन लाठ हो एक समय निकाल के लिए फिर साथ देख चाहे ना बोले भी हिमय का जानकारी करना चाहे हम अपने हुकरन के संग लाइन खुला पावे ठेपा फिर संदेह गीत जो गीत के पास फिर सुइया बाटी।

हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने हुक रहन लाइन खुल्ला भाव शून्य 91-561-255 केदा गर खुल्ला भाव अनलाइनमा www.tkaprfm.org tkaprfm एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सबको जाने संगसंगे आदि 101 मेगाहर्ज के तरंग मार्फत अपने कण के मोबाइल सेट सम्म रेडियो सेट सम्म हाम्रो दुई जाने तरंगित भिडियो आदि साथ देतिया ने रत्न जिम्मे चांद के पारो साथ देना अपने हुकन के पाला फे हो वही सुनने 91-561-255 के दगर मार्फत जिम्मे का जानकारी करना चाह गोचारी कार्यक्रम मार्फत सहभागी जनाए सेक्ठी कले शबीर को अपने हुके भावना रुचि सुनाए सेक्ठी गोचाली कार्यक्रम मार्फत गोचाली बने बनाए सेक्ठी करना अपने मई का जानकारी करना चाहम अपन अपन भावना रुचि मेल खाना संगठन के संगे चिंजान हुईना जो मन परल संगठन के यानी कि अपन अपन रानी बानी मेल खाना संगठन के संगे संघरिया गोचाली बनने के लग जो कार्यक्रम अपने उपकरण के लग्न है मई का जानकारी करना चाहम अपने उपकरण के संगे निर्धारित समय पे बिल्कुल नगर कट्टी लागल अवस्था में हम आप गलाटी कुछ समय के हमारे बाके बाबाई तब हमारे अपने आई सेक्सी करना अपने मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला बहुत शून्य 91-561-255 के नगर खुला भाई संग्रह करे आज चाहे कुछ से औसी अपन अपन बाबन के मुख दिन कही आज जान बैठ मिठ परिकार अपन बाबन दई के ढोक आशीर्वाद लेना जो चलन बाबई अवस्था के चाहे कोई कोई संग्रह के अपन बाबा हो चाहे कुछ पहुरा फेसाइट अपने देह थी अवस्था के चाहे तीज फेटी बाबई हिंदू नारी हुकरन के महान चार कह के तीज कह जाए के गणेश उत्सव फे ऐति बाबई ढेर ढेर ढेर शुभकामना देना चाहब हमार सबको रेडियो प्रेमी मैगर संघ विपिन हिमाई का जानकारी करना चाहब अपने के संगे लाइन खुला भाई शून्य 91-561-255 के डगर खुला रि फे बिल्कुल निर्धारित समय डगर कटे लागल अवस्था में हम आप संकेत मिलल बाबई बिल्कुल अटरा पटेल सम रेडियो ना के साथ डेली रेडियो प्रेमी मैगर संगठन ढेर धन्यवाद सहभागी जन संगठन फिर ढेर धन्यवाद को संगठन के सहभागी जन ने प्रयास कर रही भी अपने फिर प्रयास कर दिले में ढेर धन्यवाद इन डी में बिल्कुल अपने के फोन बिल्कुल सफल हुई अमोरी बोल अपने के रेडियो सेट समय पोगा दिले को संग्रह रत्ना जी है फिर ढेर धन्यवाद देती एक मैगर गीत छोती मई कार्यक्रम संचालक चांद के बारे एक हफ्ते के लग वीडियो हुई तो अपने बल शुभ रहे राम राम।

0: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा तीजको अवसरमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
1: सञ्चालक आरती चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98624 70483।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: दिदी, तीज पनि आउन लाग्यो, इस पालीको तीजमा नयाँ गहना किन्ने सोच छ कि छैन?
7: छ नि बहिनी, तर राम्रो राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोज्दै थिए नि।
8: त्यसो भए इन्द्रेणी ज्वेलर्समा जाउ न त, त्यहाँ सुन चाँदीका नयाँ नयाँ डिजाइनका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र बहिनी, अरू के पाइन्छन् त त्यहाँ?
8: त्यहाँ त माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला, झाला, पिटरा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्मका नौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोती चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छन् नि।
7: ओहो बहिनी, यति राम्रो सुविधा अब हाम्रै टीकापुरमा रहेको छ? अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ नि?
8: उचित मूल्य, राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो।
7: त्यसो भए ढिला नगरौ न बहिनी, आजै जाउ।
8: ल जाउ, तपाईँहरू पनि आफ्नो रुचाइको गहना किन्न इन्द्रेणी ज्वेलर्समा नै आउनुहोस्।
0: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चोक, टीकापुर, कैलाली। सञ्चालक रन बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 98844-44019।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लनबो? वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया, मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में। रत गैया झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है, मरम्मत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: आँखाका रोगीहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 98-48-53-61-95।
6: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
7: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
6: मिस्तरान बर्जना का ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
10: लौन साह्रै भोक लाग्यो भने आज त तन्नै नास्ता गर्न मन लागिरहेछ होइन, यो टिकापुर बजारमा मिठो चिकन राइस कहाँ पाइन्छ होला?
11: साँच्चै हो र भोक लागेको, मलाई पनि चिकन चाउमिन खान मन लागेको छ। त्यसो भए जाउँ न लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा, त्यहाँ त एकदम शुद्ध सफा र मिठो परिकारहरू पाइन्छ।
10: ए हो र, त्यसो भए जाउँ न, जाउँ सँगै जाउँ, तन्नै खाएर आउँला।
11: तपाईलाई पनि नास्ता खान मन छ भने लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरलाई सम्झिनुहोस्। लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा चिया, नास्ता, चाउमिन, चिकन राइस, चिकन चाउमिन, छोला समोसा, दुध, दही, घिउ, चिसो लगायतका विभिन्न किसिमका खाजाको आइटम पाइन्छन्। एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोला।
10: लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घर, सामुदायिक एफएम नजिकै, प्रोप्राइटर लोकराज खनाल, सम्पर्क नम्बर 98-48-51-69-64।

0: और ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबी में लगने संपूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमराफारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
1: संपर्क नंबर 091-560-470 र मोबाइल नंबर 98-48-57-18-28
2: ए बहिनी तीज पनि आउन लाग्यो यसपाली नयाँ गहना किन्ने सोच छ कि छैन
3: छ नि दिदी राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोल्दै थिए
2: त्यसो भए नरेश ज्वेलर्स जाउँ न त त्यहाँ सुनचाँदीका नयाँ नयाँ डिजाइनका गहना पाइन्छन् रे
3: ए हो र अरू के पाइन्छ नि त्यहाँ
2: त हार तिलहरी मंगल सूत्र झुम्का औठी चुरा लगायतका विभिन्न डिजाइनका सुन चाँदीका गहना पाइन्छ नि
3: ओहो यति राम्रो सुविधा अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ
2: उचित मूल्य राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो
3: त्यसो भए ढिला नगरौ न दिदी आजै जाउँ
2: तपाईहरू पनि आफ्नो रोजाईको गहना किन्न नरेश ज्वेलर्समै आउनुहोस्
1: विश्वास र रोजाई अब एउटै ठाउँमा
3: नरेश ज्वेलर्स टीकापुर नगरपालिका कार्यालयको पछाडि पुरानो एनसेल डिलरमा संचालक उत्सव साहू सम्पर्क नम्बर 98-48-43-32-41

को चालू जादा खाना का बाला लाख मन बाजार भैंसी ले खाला कोबी खेले को खोला र नाला आज शहर में छुटिया बटुल दे समझन छु गाउँलाई भूल लाई बुझ्दै मिठा चीज जस जस चवानी शहर में आई

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनो कन स्वागत बा। खोज खबर से मैं गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटे। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। सेती अस्पताल में जनशक्ति और पूर्वाधार के अभाव, दैनिक 1500 सम्म बिरहनमयन के चाप। बाल विवाह हो विद्यालय छोड़ना समस्या लेकर भजनी नगरपालिका बाल मैत्री पालिका बनैनाम चुनौती। टीकापुर में युवा कवि मोतीराम भट्ट के 161 जन्म जयंती के अवसर में माल्यार्पण। सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर युवा कवि मोतीराम भट्ट के 161 जन्म जयंती के अवसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अलावा युवा कवि मोतीराम भट्ट के फोटो मन माल्यार्पण और टीका लगाकर सो कार्यक्रम करगिल हो। मोहन उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में साहित्य कला परिवार के उपाध्यक्ष कंठराज गिरी, सामुदायिक पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष तथा सलाहकार तारा प्रसाद जैसी, देवकोटा साहित्य के अध्यक्ष बलबहादुर रावत लगायत सेमंता बेढल रह। कार्यक्रम कांति प्रसाद गेवाली स्वागत करल हुई कार्यक्रम में दीपक बोगटी संचालन कर रहा। सुदूरपश्चिम के प्रमुख रिफरल केन्द्र के रूप में स्थापित धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल में दक्ष जनशक्ति और पर्याप्त पूर्वाधार के अभाव के कारण से अपरवाह में चुनौती देख गिलवा। प्रदेश के विभिन्न जिला से उपचार के लिए ऐना बेरहमेन के चाप बढ़ती गई पाछ ऊह अनुसार जनशक्ति और भौतिक पूर्वाधार विस्तार हुई निश्याकबेर अस्पताल व्यवस्थापन में समस्या देख गिल हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल में दैनिक करीब 1200 से 1500 सम्म बेरहमेन सेवा लेना करलबाट बेरहमेन के बहर्दो चाट के बीच अस्पताल में विशेषज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति के अभाव रहलक अस्पताल प्रशासन जनैलबा। विशेषकै कुस ओपीटी सेवा में आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त निहोक सेवा प्रवाह में चुनौती थप गिलक बटवा गिलबा। अस्पताल के सूचना अधिकारी किशोर प्रसाद श्रेष्ठ के अनुसार अब अस्पताल संचालन के प्रमुख चुनौती मध्य दक्ष जनशक्ति के अभाव फिर एक ठो हो। अस्पताल हाल 320 संचालन करती रलक हुई लसेफे बेरमन के चाप अनुसार पूर्वाधार पर्याप्त निहोक व्यवस्थापन में कठिनाई हुई वहां बटुला 4 बीघा क्षेत्रफल में रहलक अस्पताल के जमीन सड़क विस्तार लगायत के कारण हाल 3 बीघा 19 कट्ठा 14 धुरमन सीमित हुईलवा। उपलब्ध क्षेत्रफल में विभिन्न सेवा ओपीटी संचालन कर अपना अवस्था रहलक वर्षे अस्पताल परिसर छुट्टी हुई गेलवा। अलग अलग भवन में ओपीटी संचालन करबेर समेत अस्पताल के भौतिक व्यवस्थापन में थप चुनौती देख गिलवा। सूचना अधिकारी श्रेष्ठ के अनुसार अस्पताल से अधिकांश विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कर गिलबा। बेरहमेन के अत्यधिक चाप व्यवस्थापन कति समय के सदुपयोग करना उद्देश्य लेकर टिकट प्रणाली में क्यूआर टोकन प्रणाली समेत लागू करगिलक वहां बटुला। अस्पताल में विगत के तुलना में सरसफाई और व्यवस्थापन में कुछ सुधार हुईलक प्रशासन के दावी रहलबा। विगत में अस्पताल परिसर के विभिन्न ठाव फोहर थुप्रना समस्या रहल से फिर अब उही मन सुधार हुईलक जना गिलबा। ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता हुईलक सेवा ग्राही के लाख सहायता कक्षा मार्फत सेवा देना व्यवस्था करगिलक अस्पताल से जना गिलबा। सुरक्षा निगरानी तथा सवारी पार्किंग व्यवस्थापन में समेत सुधार के प्रयास हुई तीर अलग बटवाई गिलबा। तर अस्पताल प्रशासन सुधार के प्रयास हुई तीर अलग दावी कर से फिर सेवा ग्राही आमीन पूर्ण रूप में संतुष्ट देख गिलनी हुई। अस्पताल के सेवा प्रणाली व्यवस्थापन निहुलक प्रणाली व्यवस्थित निविलक कतरा अवस्था मन समय मन चिकित्सक सेवा निपैलक तथा लम्बा समय कुरपना गुनासो सेवा ग्राही के रहलबा। अस्पताल के फार्मेसी के आवश्यक सक्कू दवाई उपलब्ध निविना कलक गुनासो फिर सेवा ग्राही हुक्र करतीलबाट। अस्पताल में औषधि निपाइल पाछ बाहर के फार्मेसी से औषधि खरीद कर अपना वाकर लागि महंगो मूल्य तीर पर्लक हुकन के गुनासो रहलबा। अस्पताल में पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार के योजना आग बहरलक हुईल से फिर योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुई निस्या कवीर अस्पतालके समग्र व्यवस्थापनमा समस्या देखिलक सूचना अधिकारी श्रेष्ठ के कहाइबा उहाँकै अनुसार संरचना थप्ती जाइक न कलहक पर्याप्त नि हो क उह अनुसार दक्ष जनशक्ति व सेवा व्यवस्थापन फे आवश्यक रहलबा। सेती प्रादेशिक अस्पतालके सेवा सुधार व्यवस्थापनके विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समेत चासो देखाइदिएलबा। मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट अस्पतालके सेवा अवस्था ओ व्यवस्थापन बारे तीन चो अनुगमन कर्सेकलबाट सुदूरपश्चिम के नौठो जिल्ला से उपचार के लाग बेराम्यान ऐना सेती प्रादेशिक अस्पताल के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था मध्य एक हो। उहमार बढ़ती गैलक बेराम्यान के चाप अनुसार दक्ष जनशक्ति पूर्वाधार औषधि तथा सेवा व्यवस्थापन सुधार कति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करपना आवश्यक देखिबा। प्रदेश के प्रमुख रेफरल अस्पताल भिलक महर्से सेती मन सुशासन जवाबदेहता व सेवा भाव कायम करती सेवा ग्राही सहज गुणस्तरीय उपचार पैना वातावरण बनकना चाहना प्रदेशवासी के रहलबा। कैलालीकै भजनी नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय पालिका बनाए लागगिल्बा। बालमैत्री बनाए ब्याला पूरा करपना एकाउन्नठो सूचक पूरा कर बाल विवाह चुनौती के रूपमा नडेगिल्बा। नगरके शिक्षा स्वास्थ्य प्रहरीके तथ्यांक से इहे देखैलबा। थारू मुस्लिम समुदायके बसोबास हुइलक भारत से सिमाना जोरगिलक ई पालिकामन बाल विवाह धीर हुइना करलबा। बाल विवाह करलक बाल बालिका आधारभूत तहके पढ़ाई पूरा निकर्क छोड़ना विवाह दर्तानी हुइना विवाह पाछ छुट्टी उमेर मन बाल श्रम मन लग्ना उमेर नै पुग्ति गर्भवती हुइना प्रोटोकल अनुसार गर्भ जाँच नै करेना परिवार समुदाय व रोजगारी मन रह बेरफेर शरम शोषण दुर्व्यवहार मन पर्ना कुलटमा लाग सेक्ना कम उमेरके दाई बाबा बच्चा जन्मैला से कुपोषित हुइना ख्याउटे हुइना पुटको हुइना जन्म दर्तानी हुइना विवाह दर्तानी होक सम्बन्ध बिग्रना जसिन समस्या देखगिल्बा। बालमित्री ओडा तथा पालिका बनाए यी सबको बाटसे मुक्त हुइपना व्यवस्था रहलबा। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछाइनिनीबाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
5: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
4: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
5: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
4: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
4: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
5: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095443893।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
8: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
7: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या
8: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
8: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
7: ईसीजी सेवा
8: डिजिटल एक्सरे सेवा
7: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
8: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
9: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
10: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पाँच थो विशेष प्याकेज आग बढ़ाई लगलग बटुलबाट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 28 वार्षिक साधारण सभामा उहाँ अर्थतन्त्र सुधारकै लागि विभिन्न क्षेत्र से समेटका पाँच थो प्याकेज मार्फत काम आग बढ़ाईतिर लग जानकारी करैलबाट अर्थमन्त्री पहिल प्याकेज अन्तर्गत भोटेकोशी बाढ़ी से हुइलक क्षति के पुनरुत्थान तथा पुनर्स्थापनाकै लागि आवश्यक काम हुइतिर लगबटुलबाट बाढ़ी से प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण राहत ओ पुनर्स्थापनाकै लागि अध्ययन होसेकलक उहाँ जानकारी गराइलबाट दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत शिथिल पूँजी बजार हन सम्बोधन गर एक साटा भित्र 10-12 बुँदे नीतिगत सुधारकै योजना लन्न तयारी रहलक उहाँ बटुलबाट निजी क्षेत्रकै प्रवर्धन तथा पुनरुत्थानकै लागि हलि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न तयारी हुइतिरलग जानकारी देती अर्थमन्त्री उहिएन तेस्रो प्याकेजकै रूपमा न आग बढ़ाइलग बटुलबाट चौथो प्याकेज अन्तर्गत नेपालमा वित्तीय कार्यवाही कार्यदल एफएटीएफके ग्रे लिस्ट से हटाई सरकार प्राथमिकताकै संग काम गतिरलग उहाँ जानकारी गराइलबाट पाँचौं प्याकेज अन्तर्गत भोटेकोशी बाढ़ी से हुइलक क्षतिकै पुननिर्माण केलाग अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनमा केन्द्रित होक काम हुइतिरलक अर्थमन्त्री वागले बटुलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड भित्रै नै वो उहाँ व्यवस्थित गर्न दिशामा नफे हाम्रो अग्रसर हुइलबाटी उहाँ कल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष रंजन श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढ़ी से अकल्पनीय क्षति हुइलक वर्षे प्रभावित उद्योगी व्यवसाय तथा व्यापारी केलाग सरकार विशेष प्याकेज लानको निजी क्षेत्रकै प्रवर्धन गर अपनाम जोर देलबाट रसुवाकै भोटेकोशी लड्यामन गैलह भदौ 10 गते ऐलक विनाशकारी बाढ़ी से प्रभावित शिक्षा क्षेत्रकै पुनरुत्थान केलाग सरकार 2,34,32,17,500 रूपियाँ लग्न अनुमान गर्लबा राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितकै संयुक्त प्राधिक टोली तयार पलग दूर्त क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार बाढ़ी से 18 ठो विद्यालय प्रभावित हुइलबाट जिहिमन 11 ठो विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुइलबा कलसे 7 ठो विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगलबा विद्यालय भवनकै संग भवनभित्र रहलक शैक्षिक सामग्री फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति नष्ट हुइलबा बाढ़ी पचाट उह क्षेत्रमा 9,000 धिर विद्यार्थीकै पठन पाठन अवरूद्ध हुइलबा संरचना पुननिर्माण तथा पठन पाठन सहज पार तत्काल 10,50,00,000 रूपियाँ लग्न अनुमान गरिगिलबा दीर्घकालीन पुनरुत्थानकै लागि 2,23,82,17,500 रूपियाँ लगुयाबा सरकार प्रभावित विद्यार्थीकै लागि सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम योजना घोषणा करलबा नेपालकै निजी स्कूलकै विभिन्न पाँच ठो संस्था र फेस सरकारकै आग्रहमा बाढ़ी प्रभावित विद्यार्थी छात्रवृत्ति दिए एक अर्ब रूपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनैलबाट बाढ़ीसे प्रभावित होकन विभिन्न ठाउँमा बैठल हुइलक विद्यार्थी तत्काल पठन पाठन सुचारू करक लागि निमित्त उहाँकनके पाइकपना विद्यालयमा नै व्यवस्था मिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र सहजीकरण कर्तिरहलबाट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सत्र उत्तर खैरेनी मुक्त कमाया शिविरके 10 वर्षीय तनु चौधरीकै हत्या हुलक तीन महिना पुग लागबेर फेर घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनी प्रक्रिया आगर्नी बहलक परिवार गुनासो करलबा घटनामा प्रहरी एकजना हान मुख्य अभियुक्त के रूपमा पक्राउ करलक हुइलसे फे छिमेकी के अन्य कुछ मनिन के समेत संलग्नता रहलक परिवार के दावी बा तनुज के दाई बाबा एकजना विरूद्ध कलक किटानी जाहे देलक उह आधारमा प्रहरी मुख्य आरोपी ठन नियन्त्रणमा लेलक परिवार के कहाइबा परिवार के अनुसार गैलक असा 10 गते तनुज रोपाई वराकन घर घुमल पाछ साइकल लेकन बाहेर गैल रह छिमेकी के मनै उहाँ रोपाई हुइटिर खेटो मन लैगिल उहाँ कुछ खैना चीज खा बनाक खाइल पाछ सन्ध्या 5 बजे छिमेकी के दुईजना बनुवक डगर हुइटी घर पुगा डेनाकटी तनुजन आपनसँग लैगिल परिवार से बटवागिल बा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन मानव अधिकार के अवस्था बहुआयामिक चुनौती से गुजरती अलग देखा गिलवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सार्वजनिक अलग प्रतिवेदन से प्रदेश में गरीबी खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा के संग महिला तथा बाल बालिकाओं पर हुईना हिंसा जातीय विभेद न्याय मन पहुंच विपद श्रम तथा आपरवासन लगायत सवाल मानव अधिकार संरक्षण के प्रमुख चुनौती के रूप में देखा गिलक हो आयोग के सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय सार्वजनिक अलग आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा भौगोलिक तथा सामाजिक विविधता के संग मानव अधिकार उपभोग मन असमानता कायम रहलबा विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र के नागरिक आधारभूत सेवा प्राप्त कर समेत विविध कठिनाई भोग परिरलक प्रतिवेदन से औल्यागिलबा

0: 2020 र 98 656 92 026।
1: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
2: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
1: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
3: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
5: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
6: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा, बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर। फोन नम्बर 0191-560-095, मोबाइल नम्बर 98484-27359।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
2: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
3: दिदी, तीज पनि आउन लाग्यो। यसपालिको तीजमा नयाँ गहना किन्ने सोच छ कि छैन?
4: छ नि बहिनी, तर राम्रो राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोज्दै थिए नि।
5: त्यसो भए इन्द्रेणी ज्वेलर्समा जाऊ न त, त्यहाँ सुनचाँदीका नयाँ नयाँ डिजाइनका गहना पाइन्छन् रे।
4: ए हो र बहिनी, अरू के पाइन्छन् त त्यहाँ?
5: त्यहाँ त माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला, झाला, पिटरा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, प्यान्डल, 1-4 आनासम्मका नौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोती चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छन् नि।
4: ओहो बहिनी, यति राम्रो सुविधा अब हाम्रै टिकापुरमा रहेको छ? अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ नि?
5: उचित मूल्य, राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो।
4: त्यसो भए ढिलो नगरौ न बहिनी, आजै जाऊ।
5: ल जाऊ, तपाईँहरू पनि आफ्नो रुचाइको गहना किन्न इन्द्रेणी ज्वेलर्समा नै आउनुहोस्।
1: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चोक, टिकापुर, कैलाली। सञ्चालक रन बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 98484-44-0019।
6: विश्रामपछि खोज खबरमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ 10 गते आएको विनाशकारी बाढ़ीबाट प्रभावित शिक्षाको क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले 2,34,32,17,500 रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार बाढ़ीबाट 18 विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्, जसमा 11 विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 7 विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन 5 विशेष प्याकेज अघि बढ़ाउन लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 28 वार्षिक साधारण सभामा उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर 5 प्याकेज मार्फत काम अघि बढ़ाइरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्रीले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत भोटेकोशी बाढ़ीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान तथा पुनस्थापनाका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताउनुभयो। बाढ़ीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारणलाई राहत पुनस्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खोज खबरमा अब पालो जनावाजको। आजको जनावाजमा हामीले जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पाएको सेवा कस्तो लाग्यो भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं।
7: बेलबाल चौधरी, जानकी 5, अमौरा देखि आत सेवा ग्राहक सब सिप रूलक है कालिम चले की आता है। बाटो घाटो तो अब ऐसी के खासे तो नहीं आयल हो, अभी बाटो घाटो तो विटी बा ग्राविल और अभी के गेहूं के बिया, धान के बिया पे अभी योगदान चलती रहा। अब सेवा तो देती बात है
8: पटराम कठरिया जैसे बात ठीक है बाबा, एक बोली व्यवहार तो ठीक है बाबा। जैसे अब लाओ आयो लड़न के भरना है जाना नहीं गई हूँ।
9: समाजी चौधरी हो हेरो, जनकी 5 मऊरा। अब हुई ना तो गैल साल में हम उनके मंदिर के लिए हमारे झोंक लगे रही तो मंदिर के डाल पैसा सड़क में डाल देने, मंदिर में पैसा एक पैसे नहीं देने, 1,00,000 रूपये दे लाते, 1,00,000 रूपये में हमरे को जो करब अस्ते हो चलत आवे गडर बडर। हमार सबसे कमजोरी हमारी वो रबा है, टेम में कबो हो जाए कबो नहीं हो पाए।
10: मान बहादुर चौधरी, सेवा तो अब कह पड़ा अब वहाँ जेबी तो अब जाकर गैले से तो अब उग जीबी तो कर देता है, काम नहीं करना बात नहीं हो। अब कोई कोई बेला में जेबो तो अब नहीं रहता है तो अब नहीं भेंट हुई, नहीं तो अब उड़ी नहीं हुई तो अब एक चुटी नमगुर जाट हुआ है हो। अब जेबो तो अब काम तो करते हैं, अब बीज बिहन अब का चीज अब समय समय में फेर हुई ना तो देते हैं, वितरण कर ले।

0: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
3: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई, कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूमत जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: सिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

महाराज परीक्षित सुखदेव ने बताने बोले से प्रसंग में लहू तवन का आदृश ईश्वर अब यहां मैं बताऊ सृष्टि संबंधी को प्रकरण कई पांच अध्याय रोको थी हिरण्याक्ष को उपाख्यान ने अब फिर सृष्टि संबंधी को उपाख्यान ने राजा परीक्षित सुखदेव बड़ो प्रेम प्रभु सृष्टि संबंधी उपाख्यान फिर बताने संबंध को कथा इस अध्याय जय बलो श्रीमद भागवत महाप्राण।